0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज
1: गजल पेशी खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy?
2: Where's the money?

0: that it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामाइन, आज ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं थिंक टैंक से, ये तोकीर हसन बुखारी साहब जिन्होंने वेंस्टा पार्टी ज्वाइन कर ली है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। जी शाह साहब वेलकम।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके नाजरीन और लिस्टर सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने सही बात की है कि मुझे कंफर्म हो गया सब कुछ और मैं परमानेंट मेंबर बन चुका हूं वेंस्टा का। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले भी काफी पुराना मेंबर था वेंस्टा का, 34-35 साल मैंने उसके अंदर काम किया और उसके बाद मैं छोड़ के रेडिकेल में चला गया, फिर मैं दूसरी पार्टी को का मशीर भी रहा हूँ। तो अब मैं वापस जो है वो वेंस्टा में आ गया हूँ क्योंकि इसकी काफी जरूरियात थी, यहाँ के जो सियासी माहौल है उसको सही करने के लिए हमें जरूरत ये थी कि हम ऐसी बड़ी पार्टियों में भी जाएं जिनके अंदर कुछ नरम गोशा जो है वो हम लोगों के लिए है, क्योंकि एक ही पार्टी में सब लोगों का चले जाना या ऐसी पार्टियों को समझना जो कि समझते हैं कि ये फॉरनर के हमायती हैं और उन्हीं में रह कर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब वो इलेक्ट हो जाता है, कोई ना कोई इलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं। तो राजा साहब, इसलिए मैंने ये पार्टी जो है ज्वाइन की है।
1: तो शाह साहब, ये पार्टी और टूट फूट का शिकार है, आपने ज्वाइन किया, क्या इसको सीधा करने जा रहे हैं आप?
2: जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पार्टी जो है जिससे मैं काफी अरसे से बातचीत मेरी हो रही थी और अब मैं परमानेंट मेंबर उनका बन के हूँ और मुझे उनके हेड ऑफिस ने भी कबूल कर लिया, यहाँ के लोकल जो एल्बर्सलोन ट्रांसफोर्म का जो फोरमैन है उनसे भी बात, हर एक चीज, यानी कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब जो असल में मसाइल ये है कि क्या हम लोग अपने जो हमारे यहाँ आने वाली नस्लें हैं और जो हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं, क्या उनके मसाइल के ऊपर हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसके बाद मेरे पास जो
1: शरायत उन्होंने मानी है,
2: जी मेरी जो मैंने शरायत उनको लिखी थी उसके अंदर 80% शरायत उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हमारे मुल्क, हमारे डेनमार्क के आईन के मुताबिक है और ये जो चीजें आपने लिखी हैं हम इसको मानते हैं, और उसका मेरे पास रिटर्न मौजूद है और वो ये है कि हम लोग इस मुल्क के आईन की तंजीम करेंगे, इस मुल्क के आईन की हम एहतराम करेंगे, इस मुल्क के जो कानून है अगर किसी कानून पे एतराज है तो उसके ऊपर हम पार्टी भी के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। और पार्टी का जो आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 2 माह के अंदर और जितने पुराने लोग हैं वो दोबारा एक्टिव हो गए पार्टी में। हमारे जो थे अपना सॉन गेल जो के पार्टी के पार्लियामेंट के जो स्पीकर थे फोरमैन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, वो भी अब पार्टी में मुतारक हो गए हैं और काफी पुराने लोग जो हैं उन्होंने वो पार्टी में अब उन्होंने वापस आ गए। और ये कोशिश की जा रही है कि हम जो है पाकिस्तान ना सॉरी डेनमार्क के आइन के मुताबिक पार्टी को चलाएं और पार्टी का जो मंशूर है उसके अंदर है कि सबसे बड़ी जो बात है फ्री हिल के सबके लिए आजादी होनी चाहिए, और आजादी किन के लिए है, जिनके जो रिलीजियस हैं उनके लिए भी आजादी है, जो जो आम आदमी है उसके भी आजादी है, सिर्फ आजादी नहीं तो दहशतगरों को आजादी नहीं, क्योंकि दहशतगर्द किसी भी मुल्क के लिए मैं भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जी तो राजा साहब
1: शुक्रिया, आप आज ने ब्रेकिंग। जी शाह साहब, आप कह लें आखिरी फिक्र कह लें।
2: जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है इसके अंदर कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे कि जिसकी वजह से पार्टी जो है वो थोड़ी सी गलत रास्ते पे चली थी, लेकिन अब पार्टी का जो वापस आई है और ये पार्टी का मंशूर जो है इंशाल्लाह ताला इस संडे को जो हम बात करेंगे तो उसके ऊपर मैं पार्टी का मंशूर जो है उनकी इजाजत से वादा करूंगा कि हम किस किस लाइन के ऊपर ये पार्टी को लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मेरी 8 को फलके थिंक में मेरी मीटिंग है पार्टी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो भी जवाब आएगा वो रिटर्न होगा, और रिटर्न के अलावा हम किसी पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि दो जुबानें रखने से आप अपने अवाम में भी गंदे हो जाते हैं और जाने सियासतदानों के साथ भी आप गंदे हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं वो बात करूंगा, मैं अपने बेनिफिशरी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं या हमारी जो बेटियां हैं हमारी जो औरतें हैं इनके हकूक के लिए हम बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला कैटेगरी 5 का जो मसला है ये भी मैं बुध वाले दिन वहां पार्लियामेंट में अपने जो कलीग्स हैं पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके सामने जरूर रखूंगा। जी राज
1: शाह साहब,
2: साहब
1: आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, ब्रेकिंग न्यूज़ दी। आपकी नई पार्टी तो नहीं है, आपकी पुरानी पार्टी, आपको मुबारक हो। आप अपना काम करें, इस मुल्क में जो काम करता है, मेहनत करता है, पार्टियां उसी को जो है वो इकनाइज करती हैं। पार्टी में मेहनत करें, जगह अच्छी मिल जाती है। आपका बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज जी।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराज पेश किया जा रहा है। जिस तरह आपने सुबह इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, उनमें एक हमारे स्पेशल मेहमान भी हैं जो कि कभी कभार जो है अपना टाइम निकालते हैं और अल्लाह हाजरा पर रोशनी डालते हैं। थिंक टैंक भी हैं ये भी, जो बरतानिया से वहाँ काम भी अपना करते हैं और उसके साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल पर अपना प्रोग्राम भी करते हैं, वीलॉग भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं और खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं। मेरी मुराद है शाह जंजुआ साहब। जंजुआ साहब, एक बार फिर आपको कोपनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी वालेकुम अस्सलाम राय साहब, बहुत शुक्रिया। और आपके जितने मेहमान हैं उनको भी मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम। जजुआ साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त तो मैं तो समझ रहा था कि शायद आप दर्रे में पाकिस्तान गए हुए हैं।
2: मैं अगर आप ये सोचें कि आपने दिलो दिमाग के साथ, तो वाकयातन मैं पार्लियामेंट की रादारियों में बैठा था, लेकिन जो मैंने बात मैंने 2 दिन पहले कही है बिल्कुल ऐन वही हुई है। और वो ये थी कि मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे और नाकामी की जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पर है, क्योंकि पीटीआई के जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हें खंगालना चाहिए कि वो हैं कौन। अगर आप जो है वो अपना मुकदमा किसी ऐसे बंदे को देते हैं कि जिसका अपना जो है वो क्लेम हो कि ये ज़मीन उसकी है, तो वो ज़मीन आपको तो नहीं देगा, वो तो खुद अपने पास रखेगा और आपका मुकदमा वो जानबूझ के जो है वो हरा देगा। तो पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
1: पीटीआई के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ है, जबकि किबला हुजूर की दुआएं भी साथ थी।
2: ये बड़ी एक जो है वो बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली और इनकलाब का जो फैसला है ये खाली इमरान खान का नहीं था, ये इमरान खान और उनके कजन जो है वो कैनेडा वाले अलामा बाहिरुल कादरी, उनका था, दोनों का था। और दोनों ने मिलके जो है वो पीटीवी की इमारत पे हमला किया, फिर मिराजुल कुरान के लोग जो है वो उस इमारत के अंदर घुस गए और फिर ताहिरुल कादरी साहब ने जो है वो मुबारक दी। ये सारा कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, सारे इस वीडियो को कादरी साहब की आवाज को सुन चुके हैं। लेकिन और कब्रें भी जो पार्लियामेंट के सामने खोदी थी वो भी कादरी साहब ने खोदी थी, इमरान खान ने तो कब्रें नहीं खोदी। वो बेचारा तो दिन को आता था 2-3 घंटे के लिए, वहां पे रक्सो सरूद की महफिल होती, गाना होता, इमरान खान साहब जो है वो अपनी कुछ गपियां लगाते और चले जाते। लेकिन इस तब्दीली को और इस इनकलाब को करबला के साथ जो जोड़ने वाली शख्सियत थी वो तो उनके कजन थे। उन्होंने जो है वो ऐसा रंग भरा के पूरी पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि ये मारकाए करबला है, और इस मारकाए करबला से जो आज पीठ फेर के भाग जाएगा वो यजीदी है, और जो यहाँ पे जम के अपना खून बहा देगा वो हुसैनी होगा। लेकिन फिर वक्त ने देखा कि लामा साहब जो है वो खुद यजीदी काफले में शामिल हो गए और वो पीठ फेर के जो है वो ऐसे भागे कि आज 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया वो पाकिस्तान जाने का नाम ही नहीं लेते। और इमरान खान बेचारा जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और इमरान खान ऐसा जेल की सलाखों के पीछे गया कि उसने जिस किसी को भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया वो पीटीआई से उसका कोई तलक नहीं था। तो ये तो खान साहब का एक वीएन है कि उन्होंने महमूद अचकज़ई को, जिसका वो खुद फन बनाते थे, उसे जो है वो सेनेट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया और पार्लियामेंट के अंदर अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर अलामा राजा नासिर अब्बास जो है वो उन्हें अपना नुमाइंदा बना दिया, फिर जो है वो एक वकील को ले आए और वो उसको सेनेट का मेंबर मुंतखब कर दिया। तो ये 2 राजे और एक महमूद अचकज़ई, ये टोटल इमरान खान की तरफ से मुज़ाकरात करने वाले हैं, और इन तीनों का मफाद इस बात में है कि इमरान जब तक हो बल्कि मरते दम तक वो जेल में रहे, ताकि ये जो है ये पीटीआई के ऊपर कब्जा करके पीटीआई को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते रहे और ओहदे सारे इनके पास हो, प्रिविलेज इनके पास हो। तो अगर इमरान खान खुद बाहर आता है तो वो तो एक लड़े में इनकी बैग पे जो है वो मुक्का मार के, मैं ठुड्डा तो नहीं मारता, मैं पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, कि वो इनकी पीठ पे मुक्का मार के इन्हें उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये लोग तो पीटीआई से थे ही नहीं, और पीटीआई से जब ये है नहीं है तो ये पीटीआई के वफादार में क्यों मुज़ाकरात करेंगे। और इन्होंने जितने भी आज तक मुज़ाकरात किए उनका एंड गोल यही था कि इमरान खान को जेल में रखा जाए और यूं ही हम जो है वो नाम का धरना देंगे, चंद बंदे जो है वो आ जाएंगे, कुछ लोग जो है वो इधर उधर हुकूमत के ऊपर अंडे फेंकेंगे, हुकूमत के ऊपर पुलिस और कानून को डंडे मारेंगे और जख्मी करेंगे, गोलियां चलाएंगे। लेकिन उनके जो पसे पर्दा जो मकासद है वो ये है कि पीटीआई का या इमरान खान का जो मफाद है वो इसमें है कि हकूमत दहशत गर्दों के सामने सर नगूं हो, हकूमत जो है वो दहशत गर्दों के सामने, इंतहा पसंदों के सामने, अफगानी जितने दहशत गर्द हैं, जितने जो है वो गैर कानूनी इतना गजीन है, उनके सामने घुटने टेक दे। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये टोटल है कि पीटीआई की बका गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानी दहशत गर्दों के साथ भाईचारे में है, और पाकिस्तान की बका उनको रगड़ा लगाने में और दहशत गर्दों का किला कमा करने में है। सोहेल अफरीदी की हुकूमत वहां पे इसलिए कायम है कि उसके जितने मुहाफिज हैं वो सारे के सारे इस तरह के लोग हैं, दहशत गर्द, अफगानी पनागजीन, कातल, मफरूर। और किसी भी वज़ीर आला का काम ये होता है कि वो अपने सूबे के अंदर जो तरक्याती काम होते हैं, अवामी मसाइल होते हैं, उसके ऊपर उसकी तवज्जो होती है। लेकिन सोहेल अफरीदी कहता है कि मेरा मैंडेट तो सिर्फ ये है कि मैं इमरान खान के लिए धरना दूं, तोड़ फोड़ करूं। तो ये तो वज़ीर आला का विजन है। अब अगर वो इससे हटता है और वो कहता है कि जी नहीं, मैं अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा, तो इमरान खान अगले ही किसी मुलाकाती को कहेगा कि सोहेल अफरीदी को खत्म करके किसी और को वज़ीर आला बना दे। तो पार्टी तो इस तरह चल रही है, यानी टोटल इस पार्टी का जो मफाद है या इस पार्टी की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी, मार धाड़, लूट फूट और इस तरह की जो है वो सिचुएशन बना के रखना है कि पता चले कि गोया पाकिस्तान जो है वो एक नाकाम रियासत है। इमरान खान, आपको याद है कि जब वो वज़ीर आज़म से, तो वो कहते थे कि आज पाकिस्तान बैंकरप्ट हुआ कि कल हुआ, तो वो बार बार आए रोज जो है वो पूरी दुनिया को इसकी नवीद देते थे, लेकिन वो असल में किसी और को खुश कर रहे होते थे। और पीटीआई का आज भी जो मतमा नजर है वो पाकिस्तान नहीं है, हालांकि अगर इनके अंदर कुछ थोड़ा सारा भी सियासी शऊर होता तो ये पीपल्स पार्टी से सबक सीखते। पीपल्स पार्टी जिसकी क्यादत को फांसी हुई, लेकिन उन्होंने पीटीआई को सेपरेट रखा, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, जो उनसे गलतियां हुई उन केसेस की पैरवी को सेपरेट रखा। तो आज उस पार्टी जो है वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, और उसी पार्टी का जो नुमाइंदा है या चेयरमैन है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट है। लेकिन पीटीआई का तरीकाकार ये है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। होना तो ये चाहिए कि पीटीआई का कोई मंशूर होता जो है नहीं है, कोई दस्तूर होता जो है नहीं है, या पीटीआई का मतमा नजर ये होता कि हम पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन वो बेहतरी लाना उनका मकसूद नहीं है, उनका मकसूद सिर्फ ये है कि दुनिया की किसी भी कीमत पे एक लखंडरे क्रिकेटर को जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाना चाहिए। और उसके पास एक ही उसके पोर्टफोलियो में है, वो है जो है वो कैंसर हॉस्पिटल। याद रखें कि कैंसर हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तानियों के पैसों से बना, उसमें हर सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी, हर एक बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, उन सब ने पैसा दिया तो वो हॉस्पिटल कायम हुआ। लेकिन उसका क्रेडिट एक जमात ले, एक शख्स ले, ये नाजायज है, ये हराम है, ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसी इमरान खान के की पैरवी में जो है उसके कजन ने भी जो है वो अपने हर चैरिटी का क्रेडिट खुद लिया, हालांकि इन्हें चैरिटी कहना ही नहीं चाहिए, ये अपनी अपनी पार्टी और फैमिली की प्रमोशन के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वो मजहब के नाम पे, जिसमें वो अवामी फलाह बहबूद के नाम के ऊपर जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट खुद अपने आप को देते हैं और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो सियासी तगोदो करते हैं। ये बिल्कुल एक गैर कानूनी है, किसी महजब माशरे के अंदर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
1: जी जुआ साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त तजिया किया, लेकिन इमरान खान की पार्टी में जो उनका वर्कर है, जो उनसे मोहब्बत करता है, वो अपने वज़ीर आज़म से मोहब्बत करता है, अपने पार्टी लीडर से मोहब्बत करता है, तो क्या इमरान खान पर कल्ट्स ने कब्जा किया हुआ या इमरान खान खुद एक कल्ट्स हैं?
2: इमरान खान या पीटीआई ये कोई पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं, ऐसे पार्टी नहीं कहना चाहिए। ये इमरान खान को इमरान खान का एक फैन क्लब है। इस फैन क्लब के अंदर जो लोग आते हैं उनकी मोहब्बत इमरान खान से होती है, पाकिस्तान से नहीं होती। जो सियासी पार्टियां किसी मुल्क के अंदर बनती हैं उन सियासी पार्टियों का एक मंशूर होता है और एक दस्तूर होता है, और वो मंशूर और दस्तूर मुल्की फलाह बहबूद के लिए होता है। उसमें ये नहीं होता कि हमने किसी फलाह बंदे को वज़ीर आज़म बनाना है या फलाह बंदे को हमने सदर बनाना है। वो मुल्की मफादात के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और उसे सियासी पार्टी पार्टी कहा जाता है। लेकिन ये किसी एक शख्स को प्रमोट करके उसे फलां फलां या सारे अहदे दिलाना, ये उसके फैन क्लब के लोगों का ऐसा होता है। और उस फैन क्लब के ऊपर भी अब एक और क्लब ने कब्जा कर लिया, वो है जो है वो सोशल मीडिया क्लब। अब इमरान खान का जो असल फैन क्लब था वो पीछे हो गया है। उस फैन क्लब के लोगों को तो कोई पूछता नहीं है, वो लोग तो कहते हैं कि भाई अगर इमरान खान से जुर्म हुआ है तो इमरान खान वो अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ जाएगा, आप उसका मुकदमा लड़ो, अगर आपके पास उस मुकदमे के एंटी दलायल है तो वो जाके अदालतों के अंदर दो। लेकिन वो दलायल अदालतों के अंदर तो देते नहीं है, अदालत के अंदर बार बार इल्तवा मांगा जाता है और सारी तवज्जो ये होती है कि हमने किसी सूरत जो है वो इमरान खान को जेल में नहीं रहने देना। बेशक इमरान खान ने हजारों क्राइम किया, वो कहते भी है कि है, वो नहीं कहते कि इमरान ने क्राइम नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद इमरान खान साहब हमारे लिए महात्मा है। तो ये जो सोच है ये सोच अच्छी नहीं है, ये मुस्बत सोच नहीं है। किसी भी महजब माशरे के अंदर ऐसी सोच को पजीराई नहीं दी जा सकती। और अब सोने पे सुहागा ये है कि उसके ऊपर भी जो यूट्यूबर ने कब्जा कर लिया है, ये जो फेसबुक के लोगों ने सोशल मीडिया के लोगों ने कब्जा कर लिया है, और टिकटॉकर ने कब्जा कर लिया, और टिकटॉकर अपना प्रोग्राम बेचने के लिए अपनी व्यूअरशिप के लिए ऐसे ऐसे जो है वो शगुफे छोड़ते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। रात को एक बंदे ने कहा कि इमरान खान सुबह फजर की नमाज के वक्त जो है वो अडियाला जेल से बाहर होंगे और उनकी गाड़ी जो है वो अपने घर की तरफ रवा दवा होगी, और फिर चंद दिनों के बाद जो है वो आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उड़ के इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो जो बंदा भी इस तरह का ब्लंडर करता है, जो भी इस तरह की झूठी खबरें देता है, पीटीआई के या इमरान खान के जो फैन क्लब है वो सारे के सारे उसका प्रोग्राम देखना शुरू हो जाते हैं, उसे धड़ाधड़ लाइक मिलते हैं और वो अपना पैसा कमाता है। फिर उसे जो है वो इससे जो है वो मजीद हौसला अफजाई होती है और वो अगले दिन इससे बड़ा झूठ बोलता है। तो ये झूठ बोलना, तवातर के साथ झूठ बोलना और एक दूसरे से बढ़ के झूठ बोलना, ये जो इमरान खान का नया सोशल मीडिया फैन क्लब है, इसने जो है इसका ये समझे कि अपने अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है कि हमने जो है वो पीटीआई के जो सादा लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आज भी जो है वो चाहते थे कि यार दूसरी दो पार्टियों से जो काम नहीं हुए वो हम करेंगे, तो उन्हें वरगला के जो है वो इस्तेमाल कर दिया। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन और मुज़ाकरात जहाँ पे हो रहे होते हैं वहां पे, यहाँ पे सेनेट के अंदर, हर जगह से जो है वो यूट्यूबर खड़े होकर अपना लाइव शो कर रहे होते हैं, और उस लाइव शो में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो यूट्यूबर जैसे मतीउल्लाह जान सबको दे ले तो वो खड़ा होके जो है वो डिक्टेशन दे रहा होता है कि पीटीआई को असल में ये कहना चाहिए, पीटीआई की क़यादत को यूं खड़ा स्टैंड लेना चाहिए, पीटीआई को हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात करने चाहिए, ये जो है वो मुतालबात रखने चाहिए। आप देखें कि मीडिया का काम ये नहीं होता वो कि वो किसी पार्टी को डिक्टेशन दे, वो पार्टी ने जो पॉलिसी ली है, जो भी उसकी लाइन है, वो आवाम के सामने लेके आता है, लेकिन वो उन्हें वरगलाता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर उल्टी गंगा बहती है और इस शायद हमारे जो पार्टी के सरबराहान है वो भी अब इसके आदी हो गए हैं और उन्हें हर वक्त जो है वो अपने हक में तारीफें सुनना जो है वो पसंद है। वो जेल में बैठे हुए भी ये सोचने पर आमादा नहीं है कि हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई और उन गलतियों की वजह से आज हमें ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो इमरान खान का साहब की भी जो शख्सियत है वो भी इसी का असीर हो चुकी है।
1: तो जंजुआ साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपने केसेस का जो है वो फेस करना चाहिए। आपकी बात सही है कि पार्टी अपनी जगह है लेकिन केसेस अपनी जगह है, केसेस लड़ें, वकला उनके पास मौजूद है, टीम उनके पास मौजूद है, अपनी केसेस होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बढ़िया मीडिया के एंकर हैं, अपना क्या नाम है, वो अक्सर आप भी उनको सुनते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 9 मई का वाकया हुआ, ये जनरल फैज साहब और इमरान खान की प्लानिंग थी, अगर स्टेट के खिलाफ कोई बगावत करता है तो उसका भी तो कोई कानून होगा।
2: आप जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं यहाँ पे मुझे आप किसी भी शख्स के अंदर जो बड़े बड़े जो है वो ताकतवर बनते हैं और बड़े बहादुर बनते हैं, उन्हें बोले कि आप वज़ीर आज़म को गाली दिखा, एक गाली निकाल के मुझे दिखा दो, आप उस सिस्टम के ऊपर जो लोग बैठे हैं आप उन्हें ये कह के दिखा दो अपने वीडियो व्लॉग के अंदर कि ये करप्ट है और फिर देखो आपका अंजाम क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह का मस्खरापन इतना आम हो चुका है कि हमारी आवाम जो है वो इसके अलावा कोई खबर सुनने को तैयार नहीं है कि उन्हें यह खबर मिले कि मुर्गी ने चूंग मार के जाद को नीचे गिरा दिया, या ये खबर हो कि राह चलते हुए राहगीर ने कुत्ते को काट लिया। वो जो अच्छी खबर होती है वो नहीं सुनती, उन्हें जो है वो ऐसी खबर सुनने की आदी हो गई है हमारी आवाम के जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और फिर वही जाके लोग जो है वो नाई की दुकान पे या किसी मिनाजुल कुरान के सेंटर पे जाके इस तरह की लायानी बातें करते हैं और वहां पे अपना एक नया फैन क्लब बनाते हैं और फिर वो वहां पे बैठे हुए लोग इस शख्स को अपना जो है वो एक रहनुमा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तमाशा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यही बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं ये कर रहे होते हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना है। लेकिन राजा साहब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो बदमाशियां हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, उनका अंजाम ये होगा कि आइंदा जब ये लोग पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इनके वीजे नहीं लगेंगे, ये जब ऑनलाइन वीजा अप्लाई करेंगे तो इन्हें जो है वो हमारे जितने सफारतखाने हैं उनका वीजा रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि आप पर्सनली आए, और जब ये पर्सनली वीडियो बेल के ऊपर आएंगे तो वहां पे वो आइडेंटिफाई होंगे कि ये तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान को गाड़ियां देते थे, फील्ड मार्शल को गाड़ियां देते थे, तो दहशतगर्दी के जुर्म की वजह से इनके जो आईडी कार्ड्स हैं वो ब्लॉक होंगे और फिर इन्हें समझ आएगी कि हमने पाकिस्तान जाना था, अपने अपने वालदैन को मिलना था या अपनी जायदाद अपनी जमीनों को का बंटवारा करना था, तो हमारे लिए क्या क्या सीटें खड़ी हुई हैं। चले ये लोग तो ऐसे हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इनकी वजह से एक आम आदमी जो है वो बुरे तरीके से मुतासर होगा और उसके लिए भी अपने मुल्क में जाना जो है वो मुश्किल होगा, और अगर वहां पे इसका दहशतगर्दी में नाम है तो उस जब इसका डोमिसाइल आएगा कि ये बंदा दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है तो ये जहाँ पे जब इनके बच्चे अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आप देखें ओसामा बिन लादेन के बेटे बेटा अगर आपकी किसी कंपनी में आता है और जॉब अप्लाई करते हैं तो आप नहीं देंगे, आपको पता है कि यार ये तो एक दहशतगर्द का बेटा है और ये बंदा तो जो है उसने तो पूरी दुनिया को वक्ता डाल दिया था। तो इसी तरह ये लोग जो है इनके बारे में भी इसी तरह का गुमान होगा कि यार इन लोगों से पनाह अच्छी, इन लोगों को बेहतर है कि अपने माशरे से, अपने कल्चर से, अपनी कंपनी से और अपने खानदान से, अपने आप से, इन्हें अपने इलाके से दूर ही रखा जाए। तो ये अगर इन लोगों को इस चीज का इदराक नहीं है तो जब इदराक होगा उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होगा और इन्हें इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
1: जिंजुआ साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप थिंक टैंक है, एनालाइज करते हैं, तो ये जो हर 5-6-7 साल बाद जो एक स्टेज बनाया जाता है उस पर ये तमाशा लगाया जाता है, उससे पहले इंग्लैंड में मुलाकातें की जाती हैं और उसके बाद जो अमल दरामद शुरू हो जाता है, उसके चौधरी सरवर साहब भी एक्टिव हो जाते हैं और दूसरे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, आपके किबला हजूर भी एक्टिव हो जाते हैं, चूँकि वो सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने करीब से देखी हैं।
2: अभी आप देखें क्यूम निजामी ने जो जिसका किसी दौर में वो पीपल पार्टी के दौर में या जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में वजीर भी रहा है, लेकिन बढ़ापा है, आप उसका पीपल पार्टी के अंदर कोई उसे पूछता नहीं है, कोई उसे मीडिया के अंदर पूछता नहीं है, तो उसका भी दिल करता है कि मेरा भी किसी अखबार में नाम हो, चंद लोग मुझसे भी मोहब्बत करने वाले हो, चंद लोगों को पता हो कि मैं भी जो है वो सबका लीडर था। तो अब उसने एक नया बतंगड़ छोड़ा है कि ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आ रहे हैं, और मैं आपको चैलेंज देता हूं आज के प्रोग्राम में कि ताहिरुल कादरी कभी जिंदा पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसकी जब भी जाएगी मूर्ति जाएगी, और इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहते ताहिरुल कादरी साहब, हालांकि वहां पे उन्होंने जो महल बनाया उनका दिल करता है मैं वो सऊदी हुकूमत से खूब सऊदी शहजादों से ज्यादा खूबसूरत महल है जो ताहिरुल कादरी साहब ने बनाया है, उसका एक बेड इतने इतने का है कि आप यहाँ पे जो है वो 60-70 हज़ार पाउंड की या डॉलर की गाड़ी बेचे तो उसका उस माल के अंदर जो बेड रखा हुआ है, जो डाइनिंग टेबल है, वो एक आप खरीद सकते हैं। तो इतना उसके ऊपर लक्जोरियस काम हुआ है, इतना उसके ऊपर जो है वो करोड़ों के हिसाब से चित्रकारी हुई है, दुनिया के कई कई ममालिक से उसकी टाइलें गई हैं, डेकोरेशन गई है, तो दिल उनका भी करता है कि मैं वहां पे जाऊं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं वहां पे गया तो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है, अगर हुकूमत ने मुझे जेल में डाल दिया तो मेरा तो वो सारा जो भूत है शेखुल इस्लाम होने का वो तो निकल जाएगा। तो लिहाजा चाहते या ना चाहते हुए मैं यूरोप में ही रहूं, तो आप देखें वो कैनेडा से 20 घंटे की फ्लाइट पकड़ के बर्तानिया में आते हैं, तो बर्तानिया के अंदर रहते हैं, यूरोप में जाते हैं, यहाँ पे सारी अय्याशी होती है, पूरा कुंबा जो है वो फैमिली हॉलीडे करता है, लेकिन यहाँ से वो 5 या 6 घंटे की फ्लाइट लेके अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं जाते, यहाँ से वो फ्लाइट लेके मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में शामिल होना भी गवारा नहीं करते, यहाँ से वो 6-7 घंटे की फ्लाइट लेके आप खुद अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, जो उन्होंने अपना मकबरा बनाया है जो अल मारूफ गोशाए दरूद है, उसे भी देखने नहीं जाते और यहीं से वापस जाते हैं और फिर टेलीफोन के ऊपर खिताब करते हैं। तो ये कितनी ज्यादती है, वहां पे उनके मदा, वहां पे फैन बैठे हैं कि क्यों ना हजूर आपने तो कहा था कि 90 की दहाई में दुनिया भर में मुस्तफ़ी इंकलाब आ चुका होगा, तो वो मुस्तफ़ी इंकलाब पाकिस्तान में तो नहीं आया लेकिन उनकी जात में आ गया, उनके खानदान में आ गया, और आप देख सकते हैं कि 90 की दहाई में कादरी साहब की जो दाढ़ी है वो 8 इंच थी, और जो है उनका रहन सहन बिल्कुल एक आम आदमी की तरह था, बल्कि उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे, और आज वो खरबपति हैं, आज उनका वो जो लिबास रात को एक दफा पहनते हैं वो दोबारा दूसरी रात अगली रात को भी नहीं पहनते, जो कपड़े वो आज पहनते हैं वो दोबारा नहीं पहनते, जो शूज उनके पास एक है जो आज होते हैं वो अगले दिन नहीं पहनते। वो कादरी साहब के बेटे की आपने तस्वीर मेरे साथ देखी होगी जो बड़ी वायरल हुई थी कि मैं मेरे साथ उनका बेटा खड़ा है, ये असल की बात कर रहा हूं, उसके एक

0: ये हमारे पास जो है वो शहनशाह ही आएगी, हम बड़े खुश होंगे, तो हम किसी नेक्स्ट पे चले जाएंगे, किसी प्रिंसिपल शॉप पे चले जाएंगे, किसी अच्छी दुकान पे जाएंगे और वहां पे 100 पाउंड का कोई शूज ले लेंगे, वहां पे कोई 100-150 पाउंड का कोई जो है वो सूट ले लेंगे। लेकिन ये ऐसी शापों के नजदीक से गुजरना भी अपनी तोहिन समझते हैं। इनके जोड़े, इनका लिबास, इनकी बहुओं के लिबास आप देख लें, वो कपड़े ऐसी डिजाइनर शॉप्स के ऊपर बनते हैं कि जहां से कोई आम बंदा उसकी उस रास्ते से नहीं गुजर सकता। वो इतने इतने महंगे होते हैं, फिर उनके साथ पर्स बनते हैं, बैग बनते हैं, उसी मैचिंग उनके साथ जो है वो जैकेट्स बनती हैं, कोट बनते हैं, शूज लिए जाते हैं, और फिर उन कंपनियों के साथ इनका मुआहदा होता है कि ये एक वक्त की बात नहीं है, आपने ये बनाते जाना है और इन्होंने खरीदते जाना है। आप जरा देखें इनका लिबास, ये आपके पास सोशल मीडिया आप डालें, बाजी गजाला डाल लें, कादरी साहब की बाकी बहुएं डाल लें, फिर आप इनका लिबास दें। मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें रिज़्क़े हलाल दे और उससे ये आपकी चीजें खरीदें। लेकिन आप कादरी साहब के कपड़े देख लें, जब वो आते हैं यहाँ पे तो वो जितने बदबूदार कपड़े होते हैं, जितने पुराने कपड़े होते हैं, जितने कपड़े उन्हें छोटे हो जाते हैं या वो उनका साइज अच्छा नहीं रहता, वो किसी एक भी जो है वो जाहिल अपने मरीद को उसके गले में पहना देते हैं, बेशक वो उसे पूरा हो या ना हो। तो वो बंदा भी जो है वो कादरी साहब का कोट पहन के खुश हो जाता है, बेशक वो उसकी उसे जो है वो बिल्कुल उसका साइज ना हो, और वो देख रहा हो कि यार इसके अंदर से बदबू आ रही है। लेकिन वो क्या करेगा, अगर वो इस तरह की कोई जो है वो नाराजगी का इजहार करेगा तो जितने कादरी साहब के बाकी फैन है वो तो कहेंगे कि यार ये नाशुक्र है, इसको तो चाहिए कि कादरी साहब जो है वो अगर खांसी करें, अगर उन्हें फ्लू लगा हुआ और वो अपना नाक साफ करके भी अगर उसके ऊपर टिश्यू के ऊपर रख के दे, तो उसका फर्ज ये बनता है कि वो उठा के जाए और अपनी वाइफ के चेहरे पे मले के देखे ये किबला की खुशबू आई है। तो इस तरह की जहनीत है जो मिराजुल कुरान के अंदर है, वरना जो है वो हकीकत आजकल सब पे यहाँ है। और हकीकत सिर्फ ये है कि ये नाकाम लोग हैं, ये फेल्ड है, ये सिर्फ फैमिली प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये अगर किसी जगह पे जॉब करें तो ये शायद इस काबिल नहीं है कि इन्हें किसी शॉप के ऊपर जॉब भी मिले। तो ये बाप की बनाई हुई चैरिटी से जो इन्होंने मदरसे बनाए हैं, वहां पे कोई चेयरमैन लगा हुआ है, कोई प्रेजिडेंट लगा हुआ है, और किसी का पता नहीं एक एक बच्चे के पास 10-10 अहदे हैं। किबला हजूर ने भी तो तकसीम की हुई है ना, उन्होंने तकसीम की है कि मसलन जो पाकिस्तान से इनकम आएगी या दुबई से जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से इनकम आएगी वो बड़े बेटे के लिए, जो यूरोप से आएगी वो छोटे बेटे के लिए, जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आएगा वो जो है वो पोते के लिए। तो इस तरह उन्होंने भी अपनी बादशाह के जो है वो इस तरह जो है वो उसकी हदबंदी की हुई है और उसे जो है वो तकसीम किया हुआ है अपनी इनकम को। जी राय साहब,
1: युवा साहब, आपने बहुत सारी बातों का अहाता किया, लेकिन एक बात बार बार जहन में आती है, लोग सवाल भी करते हैं, पूछते भी हैं, और आप फिर भी उसके बावजूद आप किबला हजूर कहते हैं आपको इतनी मोहब्बत है उनसे। शायद युवा साहब वो 65 साल वाली उम्र का क्या बना, क्या वो कैंसिल होगी या प्रोजेक्ट?
0: वो जो किबला को आनी थी, देखें जब तक किबला हजूर की जो एज है वो 63 ईयर थी, तो उस वक्त तक जो है वो फिर भी वो बहुत सारी चीजों का हया करते थे। उनका जो तरीकाकार था वो ये था, चलो 10 झूठ बोले हैं तो एक आध सच भी बोल दो। तो जो ही उम्र उनकी जो है वो 63 वर्ष से ऊपर हुई है, और वो जो उनके ऊपर मौत आनी थी जिसकी उन्हें गारंटी दी गई थी कि 63 वर्ष में या 64 वर्ष में आएगी, वो नहीं आई, तो उस किबला जो है वो उसके बाद जो है वो इतने मुंहजोर हो गए हैं कि अब वो इस्लामी कानून को, इस्लामी सकाफत को, अपने किसी वादे का उन्हें कोई हया नहीं है। देखे ना, एक तरफ आप सोशल, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, आप उठाएं जरा फेसबुक और फेसबुक के ऊपर आप लिखें डॉक्टर तायरुल कादरी, तो आपको नजर आएगा कि उन तायरुल कादरी जो है वो हर चीज की मजम्मत कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पे सियासी हैं, पाकिस्तान के हालात की उन्हें इतनी खबर है कि जितनी किसी परिंदे को भी नहीं होती, जितनी हुकूमतें वक्त को नहीं होती। लेकिन उसी तायरुल कादरी को फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, ईरान और अमेरिका के अंदर हो रहा है, उसका पता ही नहीं है। आपने कभी बयान नहीं सुना होगा अब तारुल कादरी के मुंह से कि ये जो इतना फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर तबाही हुई है, वैसी भी मजम्मत किसी मिनाजी के मुंह से आपने उसकी मजम्मत नहीं देखी होगी। आपने ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, ने किया ना

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मशकी ना तो टाइम मेरा ख्याल है काफी अरसे था, चमड़े दी मशक होंदी सी उन्होंने पीछे पाई होनी सी। ए थी मेरा ख्याल है तकरीबन
1: मैडम,
0: 1975 तक 80 तक मशकी दा दौर चलिया है साढ़े पाकिस्तान च।
1: बैंगी भी होनी सी, बैंगी मशकी भी होना, बैंगी भी होनी सी, दो एक डंडा जो तुसे नाल दो
0: कनस्तर कनस्तर पाए होंदे सन,
1: टीम
0: डंडे नाल लगा के मोटे थे उन्होंने
1: जी
0: कनस्तर पाए होंदे सन।
1: जी मेरी
0: बिल्कुल
1: मेरे अहले मोहल्ला च ना सारिया औरतों ने सारे मर्द ने पानी भरिया, लेकिन मेरी मां जी ना कड़ा चाह के बाहर नहीं गई।
0: अच्छा, थोड़े घर च होना है।
1: उस जमाने माशकी से लाया सी और दो
0: अच्छा
1: माशकी लाया सी, उसे पानी बहुत किल्लत सी साढ़े इलाके ना,
0: अच्छा
1: शुरू तू पानी की
0: हाँ
1: किल्लत रही है ना। इसलिए
0: सही
1: मैं असल वाले साहब ने दूसरा है असल ने कार देखो मिट्टी तो तेल जलना सी मैडम, एक
0: जी
1: दूसरा बूरे वाली होनी सी, वो अंगीठी होनी सी बूरे वाली,
0: हाँ
1: उस
0: आहो, बुरा
1: जमाने
0: बनी
1: जो
0: जाती
1: बूरे
0: बेचती बिल्कुल
1: वाली होनी सी ना, उसे जो वो मतलब दो चीजा सन साडा। इसमें मेरा कजन सी मोरगा तू उसले पता नहीं रुपये ना कनस्तर मिलना सी आयल ना अटकाल कोमनी चू या इस तू ही काट कनस्तर
0: ठीक ठीक
1: समेत मिलना सी आयल और मिट्टी ना तेल।
0: अंदाजा लाओ। अज ये ख्वाबा दियां गल्लां लगदियां ने, ए जड़ियां गल्लां अज दा नौजवान सुनेगा ओदे लई इक ख्वाब नगर है। ख्वाबा दियां गल्लां ने कि
1: हाँ
0: 1 रुपए दे विच तेल दा या देसी घ्यो दा कनस्तर
1: बिल्कुल
0: आ जांदा सी, या असी जनाब चवानी विच पूरी हफ्ते दी दी
1: मैडम,
0: रिसर्च
1: मैं
0: खा
1: जिस
0: लेंगे
1: दौर की
0: सा।
1: गल करना ना उस वक्त मैं जिस जमाने की गल करना उसले डालडा क्यों बहुत घट होना सी, देसी ज्यादा होना सी
0: देसी घ्यो
1: बल्कि,
0: होंदा सी बिल्कुल बिल्कुल, कनस्तर होंदे सन देसी
1: और
0: घ्यो दे
1: देसी
0: बिल्कुल।
1: घ्यो भी मेरा 10-12-15 रुपए 20 रुपए किलो होना सी।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब, गल्लां ते होर भी बड़ियां करन नु सारा दिल कर रहा है। मैं ते कहनी हाली पई ही कोर प्रोग्राम विच अगे हिस्सा लेना, इस तो अगे दियां गल्लां अज तुहानू थोड़ा तजुर्बा हो गया होना है ना, ते इस तो अगे दियां गल्लां याद करना, ते 10 साल तक दे अली असगर नु थोड़ियां होर याददाश्तां लिया के एक बारी होर साडे प्रोग्राम दा
1: नहीं
0: हिस्सा बनना।
1: तुसी दस तू जरा चढ़ो ना उते, और कोई इस तरह करो ना, कोई दस तू लैके ना
0: बाद भी
1: कोई
0: जावांगे
1: हाँ ना
0: ठीक है ना।
1: अनवर्ड तुसी कोई 12-15 साल तक ला चलो ना,
0: हाँ
1: उसी जरा और चाची आ जाएगी ना,
0: 10-12
1: क्योंकि
0: तक
1: उस
0: असी
1: तू
0: अगे
1: कद
0: रखे
1: थोड़ा
0: हैं
1: और लग
0: इंशाल्लाह
1: जाएगा ना,
0: ताला। इस तो अगे जरा असी एक शहीद लम्हे दे कर रहे हैं ना
1: ठीक है ना।
0: इंटरव्यू,
1: तो
0: ओ
1: सानू
0: शो
1: मैं
0: थोड़ा
1: ऐसे ऐसे
0: जरा
1: अनमोल
0: पूरी
1: चीजा
0: जिंदगी दा
1: सुनावा
0: खाता
1: उसके
0: करेंगे।
1: जो के जी
0: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अली असगर साहब, अली असगर समर साहब
1: जी
0: साडे नाल रावलपिंडी पाकिस्तान तो जुड़े इस्लामाबाद तो। इसलिए जनाब अपनियां बड़ियां मुनफरिद यादां साडे नाल वंड रहे सन, बहुत अच्छा लग रहा है। असीं इंशाल्लाह हुणे ही इसे प्रोग्राम विच एडवांस दावत देने आ अली असगर साहब, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम विच एक बारी होर सानूं टाइम देना, ते साडे नाल इस तो अगे दियां 10-12 साल दी उम्र तक दियां अपनियां याददाश्तां जरूर होर ताजा करके, ते बच्चों नूं थोड़ा होर हैरान करना अज दी नसल नूं कि उथे की कुछ सोहना जमाना सी, ते की कुछ असी उथों सीख के इत्थे तक आए हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर समर सर, साडे दूसरे दोस्तां नूं सुणदे रहो ते साडे नाल जुड़े रहो जितनी देर थोड़ा इंटरनेट थोड़े नाल चल रहा है, ते बेशक अगर किसी नाल गलबात करनी है तो तुसीं अपना कैमरा माइक बंद कर सकदे हो, दोस्तां नूं
1: ਤੁਹਾਡਾ
0: सुणदे रहो,
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: बड़ी
1: ਮੈਡਮ ਜੀ,
0: मेहरबानी।
1: ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਾਕੀ
0: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
1: ਦੋਸਤਾਂ
0: ਦੁਬਾਰਾ
1: ਨੂੰ
0: ਵੀ
1: ਵੀ
0: ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਮੁਲਾਕਾਤ
1: ਕਿਉਂ
0: ਰਹੇਗੀ,
1: ਨਾ
0: ਬਹੁਤ
1: ਸੁਣਿਆ
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
1: ਮੇਰੇ ਨੂੰ
0: ਅਸਕਰ
1: ਕਿ
0: ਭਾਈ ਇਹ
1: ਕਿਹੜੇ
0: ਹੁਣ
1: ਕਿਹੜੇ
0: ਸਾਡਾ
1: ਯਾਦਾਂ
0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
1: ਸੁਣ ਕੇ
0: ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਾਏ
0: ਬਾਤਾਂ
1: ਤੁਸੀਂ
0: ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ
1: ਜੀ
0: ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ
1: ਉਹਦੇ
0: ਵਿੱਚ
1: ਵੀ
0: ਜਿਹੜੇ ਦੋ
1: ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ
0: ਸਾਡੇ
1: ਤੁਹਾਨੂੰ।
0: ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂ
1: ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
0: ਜਦੋਂ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅੰਸਾਰੀ, ਮਸਕਤ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੌਬ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਲੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਨਸਾਰੀ

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें। ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है। लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे? पिया कियास्को को बता दे, डेनमार्क ने जो तरक्की की है वो डेंस के फोल्क पार्टी से नहीं की है, بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।